भावे शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राज भय सुर सतुरु करदर गिनी बिय तिरिसंगत सतुन्गेन सिदुवन सियलु उपद्रव दुरिं तुरुवे।